0: 家回。
1: 哦，爸爸来了，俺们这边的孩子，俺们这边的孩子，来，快点，快点，别动来。
2: 来，俺们上个灶去买点。
1: 来，
3: 你这玩意儿干啥
0: 呢？你还摆地搞呢？你这个，你这。
3: रात अभी बाकी था, एक किसी दोषी का ना कि खुला कहीं जाऊँगा।